मान प्रभ दूसर मने ना अनाना चंदन बास पहे मन बासन त्याग कटियो अभिमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थानाना ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथानाना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहां बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सस विगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा।

आई। कग्गा कट कट निमसै सोई, कट फूटे कट कबह न होई, तां कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अब कट कत तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना पाजी है परम सियानप एहे। चचा रचित चित्र है पारी, तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र ए है अब चेरा, तज चित्र है चित्राक्ष चितेरा। सच्चा ए है छत्रपत पाता, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा, रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बंदावा। जज्जा जोतन जीवत जरावे, जोवन जार जुगत सो पावे, हस जर पर जर।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तब

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

दो कट पर चै जो उपजै पाओ पूर रहा तें त्रिभुवन राव। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर।

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लख है जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर

संग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

तिन कुर्बाना। हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पो सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी। तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे पगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवन अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई। तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई। तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बैंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मूं डुकटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हक कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सास सुहागण होए, आसा मैला पहला गृह बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक

तन मन हर पै आगे जिंद, झूठ विकार महा दुख दे, देख वरन दिसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा

संतापे, से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विच्चों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच दिया, अमृत नाम सतगुर दिया, हृदय नाम नाही।

जो हर राते से जन परवान तिन की संगत परम निधान हर वार जिन पाया तन नारी हर स्यों राती शब्द विचारी आप तरह संगत कुल तारे सतगुरु सेव तत विचारे हमरी जात पथ सच नाओ कर्म धर्म संजम सत भाओ नानक बखे पूछ न होए दूजा मेटे को सोए हासा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक हर राते रह समाई एक तरन गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हो मैं परम न जाई। सतगुर मिले ताहू मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निसारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा।

पोखरे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा राम पगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कह कह से मुए सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया नानक गुरमत नाम ते।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रस नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आ गए, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

ले सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जन पंच राशी ता तीर्थ वासी। कुंगरू वाजे जी मन लागे, तो जम कहा करे मोसो आगे। रहाओ आस निरासी तो सन्यासी, जा जत जोगी ता काया पोगी। दया दिगंबर दी बिचारी, आप मरे अवरा ने मारी।

और निष्पर सोमा रहाओ आस प्यासी से जय आवा आगे से पावा के न पावा क्या जाना क्या होएगा री माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

सरोरड़े तन साच पछाणिया सह सुधाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैरवे।

है कोई जातिस पावे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जह देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सरवरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

अनेक जयकार करते कीरत होए सोकर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपकर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन काफी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पे। साध सहज सुख रस कस्त जियले।

सूत पोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। आसा कर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दया सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल उदन करे हार, साहो पजूता कणवत नानक।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला पुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

किन स्वास्थ्य माँ हंडाव जो किच करे पला कर मानो सहज जोग निध पाव। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत में जोगं अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस कोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्पूर नादं पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं ऐसा मेला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है

रंग रच रहा एनस बने प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर कर जोगी खीवा अमृत धार है आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदमा का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोष न होई रहा सकता शिव मारे पै वगै खसमे सा पुरसाई।

हर दर्शन पावे वडभाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नखीर। जम काल किस नीड़ न आवे, नानक गुरमुख साच।

माए सेवड़ का घी जिन नाम से आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम

मन गाते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगे मिले सुधाए रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभु सदा रहा परपूर आपे नेड़े आपे दूर आखण आखे बकै सब कोए आपे बक्स मिलाए सोए कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए गुरमुख विच्चों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सवारण हार आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहुत चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाए, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाश है, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे थिर नाम समाने। जम्मन मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा दो कूर कमावे, विष्टा का कीरा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मेला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोविंद, ना फिर मरे न आवे जाए। पूरे गुर ते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए। पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहां शब्द वसे तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड़ होर तन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए। यूं मन अंधा बोला है, किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझे सोई मैं समुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है पाइए गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए।

कुरुम सके नाल जवाई किसी तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई हमारा तरा हर व्या समाई हम हर स्यो तरा किया मेरी हर केक मैं हर बिन पक तरा और न कोई हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे झूठ कड़े कर पछोताहे फिर न रहे मन खोट कमाहे हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है ये सब कड़े माया मोह पसारी माया को लूजे गवारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत संग मिलाए हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर तरह कर्म सब सृष्ट जिने आवे आसा मेला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर अलख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना एको रव रया कट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बहना रहा मैं मन तन प्रेम महा बैराग सत गुर पुरख पाया वडपाग दूजे पाए पवे बिख माया पाग हीन नहीं सत गुर पाया अमृत हर रस हर आप पियाया गुर पूरे नानक हर पाया गुर पूरे नानक हर पाया आसा महला चौथा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सास ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनंत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर कुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो। नाम

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। हसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत

नहीं आई, हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन, कब को राग तुन उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे, कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे, लोक पति ने ना पत होए, जन नानक हर हृदय सद त्यागो, ता जय जय करे सब कोए। आसा मेला चौथा, सत संगत मिलिए हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे पाई, हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अन दिन हर लिवलाए, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर भूख ना लागे आए। आपे हर अपरंपर करता, हर आपे बोल बुलाए, से संत पले तुद पावे, जिनकी पट पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वणज ले जाए। एक ओंकार।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया। जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श कैश्चार मैल बुलाया राव। अंतर नाम निधान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मन मुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए। राग आसावरी कर सोलवा के।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हों एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई।

हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे कर हल बेल रिजाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़नावा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

रीत दुतिया त्यागी लोगा रीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राती तन

चार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किने विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार है माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जय बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोह मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

दल लाए नानक दास तेरी शरण आई प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा परदेश चाहब सौदे को आया वक्त अनूप सुनी लभाया गुण रास बन कल्याणी देख रतन यो मन लपतानी सावा पारी द्वारे आए वखर काडो सौदा कराए रहा।

पातो फूल काल न खाए। करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जब जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय। आशा मैला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया। अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे। नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए। निंदक अग्नि माहे जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते। सो नानक आख सुनावे भगत जना को सदा आनंद है। हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा मेला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा तो भी मेरा मन ना पतियारा।

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कित न लेखे पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। ग्रो ऐसा है सुंदर लाल प्रभु पावाता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस। बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे। खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए। जिस मुक्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया। प्रभु मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पे दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जाको दृष्ट मया हर राए, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिसे तिस सर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर खाती, जान सत कर।

बिस्ता अस्त्र रख परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

तब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा ते ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिले।

मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, है खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस को लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला कन्या, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर।

घर में वक्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेब बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार

निर्बुद विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तम से बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ले बूढ़त कोर

गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोड़ी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक पे बिस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कछ छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रस माहे, आस्था मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके गुरमत अपनी धारी, होए

आज्ञा मान प्रगट हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौर संगत पद केवल नाम, संग जाम लाग पव जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा शरण करे।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छुड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआ बिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिलत संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछे तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अर्ध करे सास सास संवारे ना पोहे अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

हुकम पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने। उपदेश करे आप न कमावे सत शब्द न पछाने। नांगा आया नांगो जासी जो अस्थि खाक छाने। संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा। मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। क्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला। चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना। सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा। अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे। मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे। रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया। तृप्त अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया। जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता। जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता। कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया। वर्तन नाम ना

को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतरमन मेला, दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुस मुस रोए गोविंद भजन की।

मुक्ते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निर्त नरक निवारे, नानक गुरु मुख जागे। आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्णो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरध समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यों प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए माँ पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइये सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइये भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हाय।

चित मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो राव। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखिया पई थियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा मुझ सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सुमानस देही पाई, जित प्रभु अपने मेल लियो, तन सुकल जुग साध संकीर्तन गाये, नानक नाम अधा।

महाकोरते बा पकड़ गुर काट लिए। निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सब कुर्बाने। आसा महला पंजवा, मोह मलन नींद के

छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न सातो ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक।

तब आप सिंगार सवार हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली हदूर चुका निहोरा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे सेज तरी पान कडन ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग मैं फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आशा मैला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक कै माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी।

रता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ताहो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन सुख पावे राव तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म गूंजे सोई परवान साथ सब ज्ञाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आशा मैला कन्या जहाँ पठावो तह तह जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगा।

मार्ग चलत हरे हर गाय श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाय सो जन जन की वाट न पाई है आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

सतगुरु अपना सब सदा मनावो रहाओ, सतगुरु का सत शब्द कमावो, फिर घर बैठे प्रभु अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुरु दीना।

चौकुंतमा ने दर्शन मांगो दे प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आशा मेला धन्यवाद। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुजी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

से पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पाना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहु नानक प्रभ करी मया आसा महला पंजवा। सत गुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा चूठा मोह मिथ्या पसारे रहाओ। गुर की बाणी स्यों रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा। आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे कुए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव। आपे सूर किरण विस्थार सोई गुपत सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ। कहो नानक गुर परम को खोया अनद रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहु नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन वस्या हरनामा, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम बहु जोन को आया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंग कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहु नानक जो प्रभ शरण आये, इहा सुख आगे गत पाए, आसा मेला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा, शरण गई प्रभु गुनी गहेरा, रहाओ तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेक बिग सह कोलार, तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मेला पंजवा, रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, प्रयोग गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म का

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आसा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आसा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

अरे उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तू साख जगत। उनके संग तेरी सब विथाटी, उस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

हमको तृष्णा जाओ निर्मल ता हम जचना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनिक पाठ कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनिक बार जाइए कुर्बान सारी सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आ

उपत होए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट।

दे। अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श।

मरण दुख लाथ रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख।

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ।

देखत साधु संग हर हर नाम चराहो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे।

मज्जन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए परम राजा बिस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिय कल युग उत्मो जुगा माहे ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श। राग आसा में

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वार।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही। नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना। कारण करना कारण करना एक है सोहिना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना। आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला। आशा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ हुए सका।

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलतिया। आशा महला पंजवा, कर चौथा,

प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसे। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजे परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान तज

प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए आसा मैला पंजवा। तो बिखम गार तो रह आस प्यास तो मोह, परम ही ते हो रह राव, काम क्रोध लोभ मान ए ब्याद छोरे, संत संग नाम रंग।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सोचित थर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा, रवयो सर्व थानहा, लहो जम पयानहा, पायो पेड़ थानहा, तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जागया हां।

जिन लय हर तज अन लगे हां, जन्मे मर पगे हां, हर हर जन लहे हां, जीवत से रहे हां, जिसे कृपाल हुए हां, नानक भगत सोए।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बकै न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विपूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुरु विचारा, अंतर

उजड़ पर मैं राहे न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुह बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय।

नदर करे संजोग मिलाए। रूड़ो कहो ना कहे आ जाई, अकथ कथो न कीमत पाई। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला। त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे। शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुझ नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौ को कृष्ण प्रीत भीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पह पगति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

कर शिव सहज कर गुर कर पार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कहे कहाए गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अखूट पंच तीन नव चार समावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख होए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिकता माता जग स्यो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण तोवे।

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे सेवड़ पागे।

सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

दूत न लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला, जो पावे त्यों राख दयाला। गुरमुख राम मेरे मन पाया, रोग मिटे दुख ठाकरा आया। अवर न औखद पंत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता। तू आप फुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा। अमर पुरख गुर दर्शना देखे, बिन गुर शब्द जन्म के लेखे। देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद। पर पुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही। जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान। ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग। आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने। दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी। सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक।

संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवे थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

आई, कहां सो तेग बंद गाडेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठाते, जरवंड देवे पाई। राव कहां सो कर दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंगोली हरमा।

जाए जिसनो आप खुआए करता खुश ले चंग्याई कोई हु पीर वर्ज रहाए जमीर सुनिया ताया।

राह में तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुरानी, एक ना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

न होई जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले तां संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

निरंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पय उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए।

हर दर्शन दीजै गुरमुख नाम ते आईए मन मंदिर पीजै रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाइए परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बनियाई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्में ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जम्मण मरना आखी है तिन कर तय किया आप गवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुर्की फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

पाए कृपा ते सुख पाया साचे पर थाए गुर बिन किने न पायो केती कह कहाए अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

छह वडे आए, गुर की सेवा सो करे जिस आप कर आए, नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा मेला पहला, रूरो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी, मैं ओ लगी आप

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न लागई चाले हुकम रजाई।

पाये, खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाये। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए, सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पद सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दीजै आप गवाए, हुक्मै बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख पलक सला है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओ नानो बक्षियन अंतर पर।

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जा।

पर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहा। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कर चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई। नानक सब किछ नाम है।

नानक नाम रते तिन हों मैं गई सच्चे रहे समाए आसा मैला तीजा। सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जोरते सिफती सच समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे औ

हुक्मे कार कराए दा दूजा किस कही है भाई। बुझना अबुझना तुद किया के तेरी सरकार। एक ना बख्शे मेल लह एक दरगे मार कडे कूड़ियार। एक तुर पवित पावन है तुद ना मिलाए। गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए। एक कुचल कुचील विखली पते ना वो आप खुआए। ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिरे उतवताए। नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए। सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुंची है कछ कहने अंत न पाए। गुरते कीमत पाई है सच शब्द।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगत।

पगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे पगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुर पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दी।

दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए इहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़या, रहाओ ईवड़ी

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी, जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिख्याता।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरुमुख शब्द पछा।

हों मैं ममता माया संग न जाई राम। माता पित पाई तुत चतुराई, संग न कम पै नाते, सायर की पुत्र।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत्व विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वडियाई। नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम। जग जीवन दाता हर मन राता, सहज मिले मिलाया। साध सभा संता की संगत, नदर प्रभु सुख पाया। हर की भगत

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुपाया।

शंकर पहला। हम घरे साचा सोहेला, साचे सब सुहाया राम, तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम फुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हर रस चाख्या, मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुवाख्या। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके पेखी मुक्त न पाई, नानक बिन भक्ति जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम, सा तन हर कै रस

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर सोहेला।

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी, अन दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा, तह तह हर तेरे नाले, मन से आणप छोड़िए।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गर्भ लागा जाए मुग्ध मन।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा। समुंद विरोल शरीर।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिंगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मनमुख मूर अप

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंख दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरु।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासिया।

हर हर करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम दियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम दियो। हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जप

हर जपिए आसन राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिए।

सुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आमन जान जियो। आमन जाना परम को पागा, हर हर हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वड पागी हर रस पाया। से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रदाना, ते उत्तम हर हर

अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई। हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगे पावे मान जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे कर्म ध्यान जियो। तेता युग आया अंतर।

radio. कल जुग हर किया पग त्रै किया पग चौथा चिकै टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

खिन खिन पग कोवे जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख पागा रती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पहचान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन भाई हर रस निरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर न कोए जियो अवर न कोए हर अमृत

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पे दे जान जियो हर दरगे पे दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

आगा समेला पंजवा छंत पर पहला अनगो अनद घना मैं सो प्रभ दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या।

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानिए। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर सेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जाको पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दूख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अपलाये चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाले दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुर थी आसाखी ता जिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी

अवगत अगणत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नानक प्रेम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम्पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगाश देह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कै गृह हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कै अमृत घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

तैन से मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान से आगो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ कर मया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म

बनता विनोद अनंत माया अज्ञान तालप पावे खिसे जोबन बने जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीचे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारी उधारे पगत संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत न जाए पाया गई नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आवन सब रहे अगन सागर पै शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम ते आए पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुन्नी पुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही इक्खिनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़िये अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुड़ गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाने सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा कारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया
तो माया करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी, काल बपड़े जितया।

नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत मिटाया। काथो हो मिर्ग जिवें पेख रैन चंद्रायण सुखो दुख पए नित पाप कमायण। पापा कमाने छड़े नाही ले चले कत गलाविया हर चंगोरी देख मूठा कूड से जा राविया। लब लोभ अंकार माता गर्भ पया समायण नानक मिर्ग अज्ञान बिन से नह मिटे आवन जायण। मिठे मखमुआ क्यों ले उडारी हस्ती गर्त पया क्यों सरिये तारी। तन दुहेला पया खिन में खसम चितना आयो दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो। गुज्जा कमाना प्रगट हुआ ईस उते फुहारी नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभु की चरणी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत पर आया। राख लिए रखन हार है सदा निर्मल करनी नानक नरक न जाए कभू हर संत हर की शरणी। आसा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती रावो सहु आपनड़ा प्रभ संग सोहंती। संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सुरैणी रावी है सास सास सितार जीवा प्रभ पेश हर गुण गावी है। बिरहाल जाया

दूते दैन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज जीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई मैं अंत जाई पाया, बिनवंत नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत पह पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनग्रो राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिनवंत नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निज सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी।

साथ है संग देखे करणहारा काए पाप कमाइए सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते वल वंश कर उदर परे मूर्ख गावारा सब किस दे रहा हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है मिल साध संगे पद न संगे कुल समूह तारी है शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा बिनवंत नान सदा तजिए प्रभ एक करने हारा खोट न की चई प्रभ परखन हारा पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ

बिनवंत नानक बद पाग पाई है सूख सहज समाही। आसा महला पंजवा छंक पर अठवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकाल जात। गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे ग्रह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास। दिन खात जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते। जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते। कुल रूप तूप ज्ञान ही नी तुझ बिना मोहे कवन मात। पर जोर नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत। सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओहो बेदियो सहज स्रोत। प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना। पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना। श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत। कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप। चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप। ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना। सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना। गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप। नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचिक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा सेज सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन रंग नानक मेरी आस पूरन।

0: सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे तुमने यशराज की तुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंगा उगवे

चेत छुटे तिलगु आर ज्यो सुन्ने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कौन आन सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नान सत्य आन सच जो मर जमे सो कच नि कच। महला पहला। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नान कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए। महला दूजा। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाय ले इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जाई जे किसे आने रास नान गुरमुख जानिए जाको आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जिजमा लिया थाओ ना पाएं कूड़ यार मौका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में कर्म बहा लिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार।

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आलप ताल, लख क्या के मुंडड़े लख क्या के हार, जित तन पाइये नाम का सेतन होवे चार। ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाइये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी। नदर करें जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया, एओ जियो बहुते जन्म क्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया। श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली तरती माल तन बर्तन सर्व जंजाल, नाक मुझसे ज्ञान होनी खाए गया जमकाल। महला पहला। वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां, सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ किन्नी रैन जिना मन चाहो, सिक्की सिक्ख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक हलवा रोले बहुत अनंत, लाटू माधानियां गा पंखी पौंदियां लैन न पा, सुवे चार पुआइए जंत नाम पौंदियां गंत नांत, बंधन बंद पुआए सोए पय किरत नचे सब कोए, नच नच हसे चले सिरोए उड़ना जाई सिद्ध न होए, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ सिना मन पाओ पौड़ी। नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए, जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए, जे लोड़ है चंगा अपना कर कुन्हु नीच सदाइए, जे जरवाना पर हर है जर वेश करें दी आइए, को रह न परिये पाइए। श्लोक महला पहला। मुसलमान सिर्फ फरियत पर पढ़ करें विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार, जोगी सुनत्या जे ते अलख नाम करतार, सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोष उपजय देने के विचार, दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार, चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार, इक होदा खाए चले ऐसा उतना बेकाई कार, जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार, कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार, नानक पगता पुख सलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पे कुम्यार, कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ तो अंगार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम यो विचार है जिन सच्चे संचित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया, हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सी खोवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कट लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे ते आवेख। महला दूजा। हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर

ते आकर फिराए। हौ में दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए। पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया, ओनी मंदे पैर न रखियो पर शुक्र कर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला नित देवे चने सवाया। वड्याई वड्डा पाया स्वरूप महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता, दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा, अंडर जेर उत्पुजा खानी सेत जहां, सोमित जाने नानक आसरा मेरा जनता। नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता, सो करता चिंता करे जिनु पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग। महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान, लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान, लख सूरतन संग्राम रंग में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया मन जान। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बर्स बर्स, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किछ खाए न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे सेते ने केवल, हों मैं शब्द जलाए पौड़ी। भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना, अणहोंदा आप गणाए दे, हों ताडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जित जैत आए दे।

नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्तां पर जानिए जार दैस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्तां पर जानिए जां पर करे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है तां पाए मोख द्वार। सत्तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता दियो। सत्तां पर जानिए जां सिख सकी ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सच ता पर

पाप कढ़े कोए, नानक वखाण बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ी है होए इकमन अलग से आई है। फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखे आता तूड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, श्लोक महला पहला। सत्काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल, बियो बीज पक ले गए अब क्यों उगवे दाल। जे इक होए ता उगवे रुत्ति हुरत होए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए। पैज खुम चढ़ाई है शर्म पावतन होए, नानक पगती जे रुपए कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा महता कूड़ हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार परमी तरम करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो वे कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया किकना नो तू मेल लह इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया।

गुरबिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगार ताऊ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए हारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे। सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ। द्वापर रथ पपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आठे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर। राम नाम देवा मैं सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

अत दीर्घ अत मुच ओजे आवे आस पर जाए निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोए ताता राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय को सुदे जाए महला पहला पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुख चूठ बेपूखन सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे पौड़ी कप्पड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावदे राय पीड़े अग्गे जावना नंगा दोजक चालिया तांज से खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना श्लोक महला पहला दया कृपा संतोष सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाओ कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मने पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाईए तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना तैरी तग ना थी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत्तै वर्तागे अवरागतै ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवान ता खसने का महल पाए सी

कर लावो गोबर पर न जाई, तोती टिक्का तै जप माली तान मलेच्छा खाई, अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहे तरंगा महला पहला, मानस खाने करे निवाज, छुरी वगाने तुन गलताग,

कोठे मंडप मालिया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन पाम दे हर बुजन ना ही हारिया कर फुरमाइश खाया वेख मेहलत मरण विसारिया जरियाई जोगन हारिया। श्लोक महला पहला। जे पर सूतक मनी है सब तय सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने अन के जिया बाज न कोए

ला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत्रय परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है दूजे।

का फिके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, अखर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दार ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल। पौड़ी आपते ही करना कियो कल आपते ही चैतारी है, देखे की ता अपना तर्क ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी।

पत्थर पर उरकट कुरकट इकट पत्थर पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी को ठंगन बाबा दू किने विवेकी काटी तू राव सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलिया की हो बहन पान जी जिन्हें बरी तिस्केरी हमरो परता बड़ो विवेकी आपे संत कहावे ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे नाको काटी कानो काटी काट तू।

लाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता को काको कवन पुरख की जोई, हट कूटे को बात न पूछे काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो पैसा गर कहताई, इस बंदे से जुल्म हो।

नारद सारद करें खवासी, पास बैठी बीबी कवला दासी, कंठे माला जेवा राम।

हार होगन हारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना विरध भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत तें ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर खन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछु।

खान करारा पहर खवाद न की जय रे मन, सुकृत कर कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माती गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जम कर बंद मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे, काजी बोल।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर।

बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का वस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए। राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण कर खबर न पाई। क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन।

प्रीत होई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा

रहाया, दस मास माता उधर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म पूम बीज नाही बोया, रहाओ बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया, जीवने की आस कर है जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हूँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म ते रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबड़ पाव हमारा, सुर नर मुन जन

आशा। सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम विसार हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं देखो, ये दुख कासो कहो रे रहाओ, बाप साव का करे लड़ाई, माया सब मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हु न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कुपत राजे हर्षो मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा।

कोई आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

कहा गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा तरे मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघार है आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने ना ही कछ बौरे जो दिल में खबर न होई।

में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। ऐसा पहली करूप कुजात कुलखनी, सहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुन।

रहो रहो री बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद है अर नाचे।

मरम ना जाना, सब जग अंत आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना, तरन आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना, कहत कबीर कारग है तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी, आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाए। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक से

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई।

न जीवो भगत करो हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम त्यावो सोने की सुई रुपए का तागा नामे का चित हर सो लागा आसा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे उदक माहे जैसे बग त्यान माडे काहे को की जय त्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने नामी के स्वामी लाए ले चगरा राम रसायन पियो रे दगरा खासा पार ब्रह्म जे चीन सी आशा से ना भाव से रामा पगते।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है कांसी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल पास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तक गुर ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माँ जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मकतूल सुपेत सपैयल, हम बपुरे जस

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत।

हर हर हर हर हर हर हरे, हर सुमरत जन गए निस्तरे, रहाओ हर के नाम कबीर उजागरे, जन्म जन्म के काटे कागरे।

माटी को पुकना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहा। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघानी मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

काकिन कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया रहाओ। जे जाना मर जाइए तुम ना आइए, एक ही दुनिया लग ना आप वंजाइए।

सोहन दिया फिर गल बाड़िया चले चलन हार विचारा ले मनो गंदे दिया छू महा तुड़न दिया हित सुनो।

नीचे नाम ती आये, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तो वह कोई, झूठ लह जियो।

रहाओ। रब सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दो लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द सुन जागे सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले।

आए, जित कम हर विष रह दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविय मना जित सेविय, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो गई जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है। जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले है, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुरु का पाना चित करे, सतगुरु आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई।

जाओ सतगुरु मिले हर मन वसै सहजी रहे समाए रहाओ जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हों मैं मारे ताहर पे तै सोई गुजरी मैला की जा। तिस जन सांस सदा मत निचल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पावे पीवत रहे सदा सुख होई। रहाओ।

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुर दिया बुझाए। अस्त तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुकुम बुझिया एक वसिया मन आए। जो कुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा छे। दूजे पाए जेता पढ़े परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोय। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए। गुरमति कर चानना हर नाम पावे सोए। सुन शास्त्र तू न बुझही ता फिर बारो बार। सो मूर्ख जो आपना पछाने सच न करे प्यार। सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए। नानक जो किस पा

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदा।

प्राण सतगुरु गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतपुरुख ना

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। हो दयाल मेरा मन लावो, हो अंगिन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहा। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव दिहाई, तन तन सबास।

राम जीवाया हम हो गए लाले गोले गुरसिखां ते जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोक्ष।

जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभु तारे हर आपते गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम से आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाओ धीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम है हर सोचित लावे अमृत बचन सतगुरु की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई तब जो किछ करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें जो आप कराए जिनकी पगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिव लाई।

पाए ताका रिजक आ गया कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया। गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया। उदय

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। असच मज्जन कर स्नाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसर

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए सियाना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

मैं नवनिध पाई, हाथ चरियो हर सोकार, आवो खर्चो तोट न आवे, हलत पलत कह संगे, लाज खजाना गुरु नानक को दिया, यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर, सदा पजो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम को होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, काकड़ पथ परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभे न व्यापे चिंता, पावर तुम्हारा यो मन हो, हर चरणा हो कौला, नानक दास उन

अपने दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सेन साथ तित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस अगोचर सूजी फिरत फिरत तुम रे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांचे सुख नानक हो पाया गुजरी मेला पंजवा पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछू जाया, अवर सब मिथ्या लोग लभी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त कबीर हाओ। इष्ट मीत बंद सुत पाई संग बनता रथ हसया, जब अंति

नाम विधान सतगुरु दृढ़ाया, बिन सुनावे जाई हर जप माया बंधन टूटे। अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ

नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्टि को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन गह न सकाए गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु नायो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जप तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो हीरे के संगे एक मोयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरते मन होत आनंदा

आहे न मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहा उहा तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल ने होरा गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोह तजावे प्रभ से ती रंग लाए मन को इह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाए साध

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पई करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

कपट अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

मैं मिटे सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत वीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ

दे सांस सांस आराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप प्रभु का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल पाओ राव साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभु दयाकारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभु जाप। गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभ के आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साद बचन गोविंद के आये महा निर्मल रीत राव जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी मैला पंजवा अहंग बुद्ध बहु सजन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुरु ज्ञान की।

मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रमते पुकारे कतहि नाहीं छोट हर चरण शरण।

कलेश मिटे तै परमा निर्मल गुण प्रभु गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पह

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बित्तज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख।

ना तद माया मगर न छाया, ना सूरज चंद ना ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश आकार, सर्वे जाचक तू प्रभदाता, दात करे अपने विचार, कोट के तिस जाचे प्रभ नायक, दिन दे तोट नाही पंडार, ऊंदे पांडे कछ ना समावे, सीधे अमृत परे निहार, सिद्ध समाधि अंतर जाचे।

लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर पग

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। सहजी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे दिलम न अधुआ राई। अनदे मूले नाथ सुरनाथा सतगुरु मेल मिलाई। सहजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई। पुनरप जन्म

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरणी।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं ते पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तो सरणी लब लोभ लहर निवारणं हर

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन

राजन में तू राजा कहिए, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा,

हरन मदमोहो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रज साध मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर कै पावे।

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैं गल हो रहा निक्षा क्यों कर जाए।

कोई सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोई है हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विकसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु

केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए।

राम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुरु प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरमर लाए ना।

हर सुखदाता मन वसै, हौ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता।

ही लपटा है, गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचो जाए, तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए मैला तीजा, त्यो मन केतड़िया जुग परमिया थिर रह ना आवे जाए, हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाए, जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए, नानक मन ही

पे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आये लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाए दा।

ताऊ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करें मनमुख मरे भिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए। नानक वाह वाह करें से जन निर्मले। त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी। हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय। हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय। हर कै पाणे सुख पाइये हर लाहा नित ली जाय। हर कै तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जाय। हर का पाणा तिन्नी मन्या जिना गुरु मिली जाय। श्लोक महला तीजा। वाह वाह से जन सदा करें जिनको आपे दे बुझाए। वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए। वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए। वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणिए सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाया दरगे मो

गुरमुख प्रगटैया तिथै शोक विजोग ना व्यापै अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौ।

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन सात जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लखी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा चंग्याई आलक करे बुर्याई होए शेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित नानक तैसे टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नवनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण दिचै थाओ संत धर्मशाली है। श्लोक महला पंजवा।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रत्ता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई।

जब त्या पहुंच न सके कोए तेरी टेक जन, गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन, गुर पै सिफ्त भंडार कर्मी पाये, सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना पाये, रखे आप दयाल कर दासा अपने, हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवां।

तेंदे सिमरन हब किछ लदम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिया मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्या

नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए, जिस मिल जपिए नाव तिस जियो अर्पिए। आया चित निहाल साहिब दे सुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो पगता मन उठा सच समाहरा। तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग। नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना। नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना। जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना। जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते जो सुंजै कर काव पौड़ी सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेई, तब लग बिसरे राम स्नेही।

रघुराई गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद जो राज दे ता कमन बढ़ाई जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई तू हर पज मन मेरे पद निर्बान बौर ना होए तेरा आवन जान रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई जिस तू देवे तिसे बुझाई जिस तू देवे तिसे बुझाई सतगुर मिले।

अवर ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पण।

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अरसठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

बेसवा जोन वल वल अवतर है। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल वल अवतर है। अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल वल अवतर है। अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, बद तिलोचन।

परमाद पुरुष मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

हम विषम कई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन मानक के प्रभ सुंदर स्वामी, मोय तुम सर अवर न लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर को संत बताओ मारगे। हम पीछे लाग चली रहाओ, प्रिय के वचन सुखा में ही रहे। ये चाल बनी है पली, लकड़ी मदरी ठाकुर पाई। ओ सुंदर हर खुल मिली, एको प्रियो सखियां सब प्रे की। जो पावे पुरसा बली, नानक गरीब क्या करे बिचारा। हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू ले राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ, हो फिरो दीवानी आवल बावल। किस कारण हर टोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा। हम किसकी गुलगोली है, सतगुरु पुरख मनाओ अपना। हर अमृत की चोली है, गुरु प्रसाद जन।

पूरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ करन ठाकुर प्रभु तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा

हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्म ही पूर्यारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी, रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यो पावे क्यों राखो स्वामी, जन नाम शरण तुम्हारी देव गंधारी। हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी, ज्यो बेसुआ के कर पूत जमत है। किस नाम परयो है कपटी रहाओ, जिनका हृदय नाहे हर स्वामी। तिल बिगड़ रूप बेरखती, ज्यो निगुरा बहु बाता जाने। ओह हर दरगह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी। तिना साध जना पग चकती, नानक पतित पवित्र मिल संगत। गुर सतगुर पाछे छुपती छक्का पहला, देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चितलाई है। प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे, सदा सदा हर त्याय रहाओ। अंतर एको बार एको, सब में एक समाय है। काट अब घट गविया सब खाई, हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के ते, तेरा अंत ना कतहु पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी, जन नाम सद बल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राज रहो रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोई है रहाओ। कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है। कब मुँह मैल परे अभिमानी, कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया, दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभिमाना। शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कहे सोई पल मानो। नाहे ना का बोल करत, निमख न बिसरो किए मोरे ते। बिसरत जाई हौ मरत, सुखदाई पूरन प्रभ करता। मेरी बहुत इयान उपजत, निर्गुण करूप कुल ही नानक। हौ अनद रूप स्वामी परत, देव गंधारी मन हर कीरत कर सदहूं।

कभु सुख आयो कह परम विनाशी कृपाल हुए प्रभु जभु कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लभु देव गुणारी मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाओ रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग विदार्यो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विसार्यो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधार्यो देव नारी मन सगल स्यान रही कर्म कराम हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ आप मेक पय शरणाई इन मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही खिन में खाप उठापन हारे कुदरत की मना पही देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहु जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते महा किलबित कोट दो करोगा प्रभु दृष्ट तुहार।

अज्ञान अंधेरा संती काटिया, जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। तरम तरम किस उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ स्यान तो संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंदारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारो, हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एवं निधाना, जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम निसाहा। देव नारी महला पंजवा, मन कह अहंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशे सो छारा रहा। जिनकी आत सिमर प्राणी, जियो प्राण जिन सारा, तिसे त्याग अवर लपतावे, मर जन्मे मुग्ध गवारा। अंध गुंग पिंगल मत हीना, प्रव राखो राखन हारा, तरह करावन हार समरता, क्या नानक जंत विचारा। देव गंधारी महला पंजा, सो प्रभु नेरे हूते नेरे, सिमरते आए गाए गुण गोविंद, दिन रैन सांस सवेरे रहाओ, उदर दे दुलभ साधु संग, हर हर नाम जपे रे, करी न मोहत न चसा विलंब हो, काल नित नित हेरे।

पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिक जारो सबसे नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो गुण गाने ठाकुर अविनाशी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्याम तार दिन रहनी जी प्राण से प्यारा रहो शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाश प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा

देवदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गंदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिक न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंदेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवो तब

कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिसारे। देव गंधारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारो, दीन दयाल पे प्रभ अपने, बहुर जन्म नहीं मारो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारो। प्रभ गुण गाए बिखे बन करया,

ऊंचा आन न हम सर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहा बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाइय मन रूचा खोज असंख्या अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हौ तुम प्रमो न पाई रविया रे रविया सर्व थान जो बैसंतर काश मझार बिन संजम नहीं कारज सार बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत काज अभिमान कहो नानक पाए हैं परम निधान। देव गंधारी महला पंजवा जानी न जाई ताकी गात रहाओ कह पे थारो हों कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा। देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जा का अंत ना पारावार। देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साक्ष

कृपा निज मेरा मुख साकत संग न जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुलसी रे। राज देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समरथ पंथ बिठले हो बल बल जाओ।

मात पिता पाई सुत बंदत अर सुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेर से प्रेत पुकार आज धरी को ने राखे कर के देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देवदारी महला नावा जगत में चूटी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या नीत रहा मेरो मेरो समय कैक है हिस्सो बांधो चीत अंतकाल संगी ने को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभन गुरु प्रसाद राग विहागड़ा चौक दे महला पंजवा।

बहु बंदे करिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत महको जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह ताको विभारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सबते रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म कर नानक प्राणी चरण ताहीं चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

कोई हर सब आन मिलावे राम। हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेड़ा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल।

गुर सतगुर मीठ लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वड पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आएंगे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत वित पाया राम गुर अमृत

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नाम तुहार।

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

जन कहे नाम के मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हर दहज खोज तो हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा तारे आए राम, हर मंदिर हर जियो सा।

संग दर्श ना पाए राम, अवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम, निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे, गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम स्वयं पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये, संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कन कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

पर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया ऋद सिद्ध नव निध।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर

पतित उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतित उदाहरण शरण स्वामी कृपा निज दयाला, अंग कूप ते उदर करके सगल कट प्रकट।

नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखो मोरे। जाके बिछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

गुर के शब्द मन के दिए सदा बसे हर नाल। नानक नाम तिना को मिले जिन हर वेखे नदर निहाल। महला की जा सुप्त खजाना बख्श है जिस बख्शे सो खर्चे खाए। सतगुर बिन हाथ ना

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा तुझ जेवड़ अवर न कोई तुझ जेवड़ होर शरीक।

सतगुर कह तै पन न करियो रहे अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

हर कृपा ते होआ हर भगत जना कै मुहे दिखै जगत तरिया सब लोड़िए स्रोत महला तीजा सारसना जल जाओ जिन हर का स्वाव न पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया महला तीजा सारसना जल जाओ सारसना जल जाओ जिन हर का नाव विसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाई प्यारिया पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखे विदसे आपे जित पावे तित लाए हर इकना मार्ग पाए आपे हर इकना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सच तपावस कर वेखे चलत सबाए गुर प्रसाद।

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज पौड़ी जदों आपे साथ किया जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख

कहे कथे ना पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने ना पायो पौके मुए बिन लाए गुरु के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटिजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करिजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करिजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निरपो पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन। जन नानक सालाहे ना रजै, तुझ करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

संध्या प्रवान है जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुरु प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी।

नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे चोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न फुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

आए हो, सतगुरु का पाना चित रखो, संजम सच्चा नेहो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचे, आपे ही मुह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करते की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा वणजारा जिन वत्तर लदया हर नाम तन तेरी सब तिसैनो सालायो संतो जिन दूजे पाव

पौड़ी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे

पौड़ी आपे सब कट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर ओथे वेद पुराण न सास्ता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर अपनी एक

तुर खसमे का हुक्म पाया बिन सतगुर चेते आना जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा।

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्मे।

प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए नानक ऐसा विरला को जोगी जिस पट प्रगट होए पौड़ी।

सतगुरु मोह को हर दिया, सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करू की दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर नाम से आया रहाओ, ब्रह्म वेद वाणी प्रगाती माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर्ते करे अपने तामस बहुत अंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, किस लग करे संसार।

साचे नाई रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक को सच वर्ते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला। बड़ हंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

गुरुमुख जाप पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वदाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच कर

के मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हौ में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हौ में जाए रहाओ, हौ में सब शरीर है, हौ में ओपत होए, हौ में वड्डा गुबार है, हौ में विच बुझ ना सके कोए, हौ में विच पगत ना हो वई, हुक्म ना बुझे आ जाए, हौ में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हौ में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

अपने गुरु को जाता रहाओ। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हाओ क्यों मिला मेरी माया। हाओ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हाओ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हाओ क्यों कर पिर को मिलो एयानी। जो पिर पावे सा सुहागन साई पिर को मिले सियानी। रहाओ मैं विच दोष हाओ क्यों कर पिर पावे।

हौ जाए कुछ अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हौ सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हौ क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं

जो हर हर कथा सुनाए, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी, तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे, सो वेखे जिस आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा संभाले। सो हर हर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया। नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर तेती रलिया। वडहंस महला पंजवा कर पहला, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्त जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वढ़हंस महला पंजवा, तन सोवे ला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सत मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वढ़हंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को

बिने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता। वड़हंस महला पंजवा।

महला पंजवा तू वरदाता अंतरजामी सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढांस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे न कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ पै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंज

साध मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये सो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

सच तुन सच शब्द विचारा, अंजन सच सलाना, तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ, दासन दासा होए रहे ता पावे।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यों रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजे रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आई नाता सो प्रवान सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी। नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना।

जुग जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

काला सोने नक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला, सोवन टाला कृष्ण माला, जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया, सिख सुनो महेलियो, हंस हंसा बग बग्गा।

सतगुरु प्रसाद। अपने पिरके रंग रती मोइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे। सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी, हर हर सिउ निहो रचाया। आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया। सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी। नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी। निर्गुण वंतड़िए फिर देख अधूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोइये फिर रव रहा पर पूरे राम। फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता। तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता। जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे। नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे। सोहागनी जाए पूछो मुइये, जिनी विच्चों आप गवाया। फिर का हुक्म ना पायो मुइये, जिनी विच्चों आप ना गवाया। जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने। सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने। कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया। नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया। हों मैं मार मुइये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुइये निज कर वासा पाए। निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी। फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी। हर वार सुहागो मस्तक पागो।

हर राजी जय अन दिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर बिचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए।

मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वक्त ना पाल, जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई, मन मुख अंधले ज्ञान में होने दूजे पाए खुआई। बिन नामे को छूटे नाही सब बाजी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त न पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वा पारा, सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा। नामे नौ निध पाई मन मुख माया मोह व्यापे, दुख संतापे दूजै पत गवाई। हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडपागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत नहीं चल अत

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन

गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम है, दूजा रंग जाई साच समाई सच परे भंडारा। गुरमुख होवे सोई बूजे सच सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले होर।

सब बरल है दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला माया मोहे खुआई। एह जगत जलता देख के पज पे हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई। तुद जेवड़ अवर ना दाता सेवा लागे सेवड़ पागे जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई। गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा। साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस महला चौथा। हौ गुरबिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी गुर सिख नी त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, करथा के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिम अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना

निफल जन्म चिन बिछा गवाया ते सापत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ सूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिन सा दर्श ना करियो जिनी हर हर नाम ना प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरुष ना पाया हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी, हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनतरंगा गुरमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर

महामार्ग पंथ बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सुख लियो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंगती, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर।

आज सबसे आया मंगल गाया, चूके मनो देशा सो प्रभ पाया कथे न जाया, सदा सदा संग बैसा प्रभ जी पाना सच्चा माना, प्रभ हर तन सहजे जीता, कहो नानक तिस जन बलिहारी, तेरा दान सबनी है लीता, कहो पाना तात्रिक अघाए राम।

जिन हर हर रसना पनिया राम से सह सुहेले गुणे अमोले जगत उधारण आए तह बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सतगुरु बाणे श्लोक।

साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम, हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए, दुख नाश परम दिनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा,

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये प्रभु त्याये मिटे जम के त्रासा गोविंद गाया साथ संगाया कई पूर्ण आशा तज मान मोह विकार सगले प्रभु के मन पाये दिनवंत नानक दिन श्रेणी सदा हर हर त्याये दरवाजे अनहत वाजे राम कट कट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण के अंत किस कह न जाई कोई न सके पहुंचा आप उपाय

सातन रंड न कबू बैसई, ना कदे होवे सोग, ना कदे होवे सोग अंदिन रस भोग, सातन मैल समाणी।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुर हर नाम।

के। सतगुरु मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तबूज पाए। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना ही विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए।

हार। गुर शरणाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा, पाई जित लख पार जन पाए। श्लोक महला तीजा, कर पहला।

सतगुरु सेवै तां सुख पावै, नावै तां जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रस साध न आया संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वडभागी, जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिले ता अखी।

तुम उपजे दतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहो त्रैगुण माया परम पुलाया हो मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा हो मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

सोरठ महला चौथा हर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद आपे आप वरतना प्यारा आपे आप अपाहो वंजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वंज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाहा रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप तराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पत्तन पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यार।

प्यारा आपे करे सो होए, आपे अलख न लखिया प्यारा आप लखावे सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर न कोए, सब कट आपे भोग वे प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए। नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए। सूरठ मैला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा, आपे था पुथा पै आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेख है प्रभ आपे। आपे वंटन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे।

अमृत नाम महा रस मीठा, गुर शब्दी चक जापे रहाओ, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे, आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही सब तापे, आपे सदगुरु आप है चेला, उपदेश करे प्रभापे, आपे नाम जपाइंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस प्रापे, सूरत महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुर पूरे मीठा लाया, रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म वक्दा प्यारा, जल माटी बंद रखाया, आपे ही पौ पाइंदा प्यारा, बन बकरी सिर हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वर्तदा प्यारा, तै अग्न ना सके जलाया, आपे मार जीवाइंदा प्यारा, सह लेंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारे लाया, जो आप चलाए क्यों चलिए प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया, सोरठ महला चौथा, आपे सृष्ट उपायदा प्यारा, कर सूरज चंद चनान, आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुर न आवन जान, रहाओ आपे ही गुण वर्तदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बच कराएगा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुक्म वर्तदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान, आपे सेव कराएगा प्यारा, आप दिवावे

या ठाँ पे आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अंदिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन बेदया हर दिन रह न जाई ज्यो मछली बिन नीर बिन सह क्यों नामे बिन मर जाई मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई हौ अंतर नाम।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के कर लागे तां सीतर, तां श्रम काटे आ जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

हर नाम समान, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई,

रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिसका तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुखदाते निफुट न कभी जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अंदिन नाम वखाणी उपदेश सुन सा

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा, दो तुके

हो बुझाई सेवों साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न खापे साध संगत बुद्ध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुलाई ओत पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदेही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तुम।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है विहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे, नानक को गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी।

मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम से आया सर्व कुशल कब थिया संतन बिन अवर ना दाता दिया जो जो शरण करे साधु की सो पार ग्रामी किया रहा ओ शराब मिटे जन से।

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरट महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाके प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

तेरे देखत सुनत सवा है संगे मैं मूर्ख जान्या दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे मैं मूर्ख की के तक बात है कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्वास न करिया रे सोरठ महला पंजवा जिना बात को बहुत संदेशरो ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊद कमल दिखाया।

सत ते सयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जह प्रापत ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मन लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन।

निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो तुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साव लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की।

तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सताणी संत हमारा

संतन सो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का सोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

अंग मंगल विश्रामा, मन बाछत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकी कछ न वढाई।

तेरा सज प्रेम भगत प्रभु मेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अधाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जब तक समझम ज्ञान तत बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले काफी जम की फाका पहु नानक प्रभु कृपा तारी मन तन पे बिगासा सूरठ मैला संजमा करण करावण हार प्रभु दाता पार ब्रह्म प्रभु स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभु अंतर जामी।

मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर, अमृत हर रस्ता के।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हो मैं बंधन के पारा। देखिवाड़ अनक पर्दे में, पर बारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपुरे की बाणी, जप अनग करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म प्राप्त होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख मासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभ हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी तारी, संतो यहा बताओ कारी, जित हो में गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी,

रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी कट कट मैं दो जिया संतो कट कट रहा समान।

स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जाके सिमरण होए अनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्ण।

रहाओ। सांत पावे होवे मन शीतल, अजन नाम कर तुखी, गुरु नानक को प्रभु दिखाया, जल थल से पवन रुखी। सूरत महला पंजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनके आप छुड़ाओ, ए पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाओ, हर जन मंगल गाओ।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ मैला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई। गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वडभागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई। तिन की पूर्ण

धारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश विनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज सुन प्रभ के चरण निहारया राखन।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुर नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिर

हट तार, हर के चरण हृदय उद्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो।

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सूरत महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

मिल पंचों नहीं पैसा चुकाया, सिकदारों ने पति आया, उमरावो आ गए चेरा, मिल राजन राम निबेरा, अब टूडन कतो न जाई, गोविंद फेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा, ता सगली मिटी पुकारा, लबद अपनी पाई, ता कट आवे कट जाई, कह साच न्याय निबेरा, ऊहा सम ठाकुर सम चेरा, अंतर जामी।

गुर वड्याई ताकी कीमत कह ना जाई, फिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराचत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय हम दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी चितलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

बिघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप कराया कर कृपा नाम रस

माई सास सास प्रभ त्याये हर मंगल नानक दाइये। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

पूरी, प्रभ रव रहा पर पूरी, खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म वित्तों कुर्बाना, गुर के चरण कवल रिद तारे, विघ्न ना लागे तिल का कोई, कार्य सगल सवारे, रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए, पतत पुनीत सब हुए, रामदास सरोवर नाते, सब लाते पाप कमाते, गुण गोविंद नित गाय, साध संग मिल त्याय, मन बाचत फल पाए, गुर पूरा हृदय ते आए, गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे।

गुरु सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात।

पाए सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांची बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती होरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई। तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संतां धूरी। सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बंत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, ते पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

हर के नाम की वडियाई, आप पैर गुण गाई, गुरपूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

पंजवा गुर अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संतो किस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम ते

सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम ते आए रहाओ। जो मंगे सो लेवे, प्रभ अपनिया संता देवे, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक।

जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा, पूरन जाके भागा। मिल साध संग हर ध्याया, आठ पहर आराध्यो हर हर। मन किंदिया।

बाना सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लोड़ा गुरु उबारिया अनद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता शुभ चितवन दास तुम्हारे।

का सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला हर दास सुनी पवे।

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए,

हर आराध सबो किछ पाये, कार्ज सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना आनंद करे नर नारी। हर हर

कहाओ, आप सहाई होआ, सच्चे दा सच्चा टोआ, आप सहाई होआ, सच्चे दा सच्चा डोआ, तेरी भगत वडियाई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे भाणा, ता जपिया नाम रम

भारी, प्रभु राखी तेज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई।

कृपा करे जिस प्राण पथ दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पे साथी कर जहली ने सर्व तुदी ने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व थो।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्हीं जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अखत कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे, ज्यों माता

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडे आई।

दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए संतोख पया संसारे गुरपुरे ले तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबे थोक सवारे गुरपुरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबे थोक

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कत होना है। साचे साहिब सिओ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है। गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है दर्शन पेटत होत आनंदा दुख गया हर गाई है। हर रस पी वो भाई नाम जपो नामो आरादो गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए।

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नावा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भज ले जात अवसर बीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो। मानस दे लही, नानक कहत।

परवारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह की नी रहाओ मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो नै उपजो कछ ज्ञाना काट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारयो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उधारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहु कैसी, धर्म कौन सुन करी, कौन नाम गुरु जा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहि जपे गत पावे, और धर्म ताके समनाहिन, एह विद बेद बतावे।

सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई सो तुम ही मह बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नामा। माई मैं केवित लखो गुसाई, माम हो अज्ञान तिमरमो, मन रहो उरझाई रहाओ, सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई। साध संग कब हो नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन, राख ले हो सरनाई, सोरठ महला नामा। माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत, के विद्रो को ताहे रहाओ, वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहीए बसावे, पर तन पर दा।

जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिन सत लगत ना बार रहा।

जब ही निरतन देखियो नर को संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तक जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोगते रह न्यारो नाहे मान अपमान।

मत साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे, हृदय शब्द सदा पै रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले, तावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसै सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी लाई, पिखिया नाम रजे।

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जगजोनी सिर सिर लेख सामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथ है का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाल है पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खानं शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला तितुकी आसा मन सा बंदनी पाई कर्म तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिन सह नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई

कह पारी। दुर्मत कणे विभूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूझे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड बोल बिख खाई। पंडित दही विलोई है पाई, विचो निकले तथ। जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख। एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए। बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए। गुर मिले पौ मन वसै पाई, पै मरना सच लेख। मज्जन दान चंगियाईया पाई, दरगे नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वस्या चूका पेख। ए तन हाथ सराफ को पाई, वखर नाम अपार। ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार। सोरठ मेला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे। तिनके साथ तरे, तिना ठाक न पाई।

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग आन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो से वो दिन रात सो क्यों मन हो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वैता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लोभाए नाम समाले सुख वसे पाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल।

जा कै कर सब पिछे पाई, नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

रोग पुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाहीं विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुते रिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियाण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे।

आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारया प्यारे

हो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

तीजा सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मरा है नानक मोए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उब्बे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाना अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहार।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग ना जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाज लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके अड़ अड़ तीरथ नाए मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा हो मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ। ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शिए से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी जो सेवे सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया। से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर तो।

आए पौड़ी। बैसकिया जस गावे गावन हारिया, हर नाम सलाहो नित हर को गलिहारिया। जिन्नी सुन मनिया हर नाव तिना हो वारिया, गुरमुखिया हर मेल मिलावन हारिया। हो बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

जा। हर गुण तोट ना आवई, कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे, गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी, तड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई, बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा, अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक, जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा, गुरमुख हर सा।

शक्ति सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुकई न संसार विचों जाए नानक नाम विहुणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार

है सब राज सृष्टि काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कारे ला।

नानक जे गुरुमुख करे सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हों बलिहारी तिन कहो जो गुरुमुख सिखा, जो हर नाम ते आएंदे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा। हर नाम सलाही रंग स्यों, सब किलवित कृथा। तन तन सुहाव।

बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उठारे दब्यो सुत्या गई वे आए सतगुरु का शब्द सुन ना जागियो अंतर ना उपजियो।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीकर पाने।

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

तुद आपे सिस्ट सिंजिया आपे फुनगोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई

आई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते देखो निरख शरीरा, हर के नाम बिन

संग भाई आगे सजन सुहेला मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया आप

नाद समाए लो रे सतगुर पेटले देवा राव जय चिल मिल कार दिसंता।

रतन परोया निज पाव पया परम पागा गुर पूछे मन पतियागा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया।

भिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वह सोई कह रविदास।

खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरियो पानी आपन बापे न किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौ बिन गांठे जाए पहुँचा, रविदास जपे राम नामा, मुझ जमस्यो नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

तिसै सरेवो जाके जी पराणा अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना नानक दिन मैं सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिया चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुँह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नजरी नानक नहीं कोए, तनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मेला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिये तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी पूर बोल मल खाए,

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

कहो। सहज मूरत नन्ना एक को ही, सहज पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहज पद गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो पिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंजनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम।

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अवर न कोई, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण सब

परम पट फूले गुरु प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया सुना श्री मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कहे नौ सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल पापी कटक उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर्धारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तना श्री मैला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर के नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिग लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम कैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मित कह न सके प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक तल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूख पुकानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तना श्री मैला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साख जना की। जिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरु पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुरु इव हर हर नाम ते आई।

समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी। हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी। तब हर से प्रीत बने आई बहुत चिंत विसारी। हर नाम उधारी नानक हर पय है सखाई। तनात्री मेला चौथा। हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट। इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत। सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर बनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम। हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी। हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मेला चौथा। चौरा

चातुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हूँ तिनके सब दलिहार जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। सांसरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तिनका हर ठाई पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

रहा हो। आपे गुरु चेला है, आपे आपे हर प्रभु चोज विधानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसे, और सब त्याग को है हर पानी, त्रासी मैला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जा के वस है काम देना, सो ऐसा हर त्याय है मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय है हर पुरुष निरंजना राव, जय हर सिमरन भयाते उपाद गत कीनी, वड पागी हर जपना, जन नानक कौ गुरु।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करें सगल जनते।

ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो।

संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुन चरले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनाश्री मैला पंजवा, कर कृपा दियो मोहि नामा, बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए साध।

किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो टीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल मई अल।

कर कीर्तन पुरख विदा सा पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो कयो परगास सदा सुख मन में है सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंत।

त्रिकता में ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा काम वंक कामी बहु नारी पर ग्रह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुरते जाना तनासरी मैला पंजवा लवे।

जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, बर्ण

यो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो ममता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद इहा उहा सर्व शोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी नाम लैत कोट अगनासे भगत बांसे सब तूरी सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना पार बम अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहो ओला हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन हा सितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण फुंगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांचे नित नानक पुने पुने बलिहारिया तना श्री मैला पन्या मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो।

फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत कयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस देश

अनब सदा उलास रहाओ, चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो तै हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में, मन सदा ते आए। ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिये, दिनस जाए जो निमख में, सो अल्प सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कट ऊन न होई, सास सास समालता, मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जहाँ का रूप, जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभु, जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभु, रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा, जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ, अनद मंगल गुण गाओ, सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाचन पाजन थाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जा के संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जा को कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिख्या विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा इको ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ।

साथ साथ संभाले ए लोक परलोक संग सहाय जब तक मोहे रखवाले। गुरु का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए न साके जाले रहाओ निरसन को तन अंधले कौटिक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। सनासरी मैला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अनज सगल ही जाई गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव पाको कोई न पहुंचन हारा जाके अंग गुसाई जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आई। सनासरी मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भे पोमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा क्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट संवारे जैसा अबित तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हारे रहा आन त्याग पे एक आसर शरण शरण करे आए संत अनग्रह पे मन निर्मल नानक हर गुण गाए। सनासरी मैला पंजवा जान को हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जा का सतगुरु पूरा। ठाकुर गा ये आत्म रंग सरणी पावन नाम से आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही। सनासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डैकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुह कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उत पेखे आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। सनासरी मैला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जा कै मस्तक करवा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरवा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम परापत लाहा। सनासरी मैला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परो रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल। सनासरी मैला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही पपाल रहाओ। नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। सनासरी मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जाम है संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर।

करत गुदारी, मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, के टेक मने सदारी, साकत की आवरदा जाए बिरसारी। जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत, काम नहीं गावारी। रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ते बंधन छुटकारी, बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत, साध जना संगारी। तनाश्री मैला पंजवा, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का, पार ब्रह्म मोरे जाती। रसना राम रसायन माती, रंग रंगी राम अपने कह, चरण कमल निज साथी। रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया, पूरन प्रभ की पांती, मेल लियो आपे सुखदाते, नानक हर राखी पाती। तनाश्री मैला पंजवा, दूत दुश्मन सब तुझते निवरे, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए, ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हर नीत, मुरार सहाय हो दास को, कर गए उदरो मीत। रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे, खसमाना करे आप, नानक आनंद भये दुख पागे, सदा सदा हर जाप। तनाश्री मैला पंजवा, चतुर दिशा की नो बले अपना, श्री ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद,

औखी करी न देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पड़े साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। सनातरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नानक।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम। मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम। चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम। गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान। सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ। चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो। शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक। मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख। कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक। आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक। तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम। मां संतोष हो।

निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई न पहुँचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्चार करन हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से पार ले वो राहो। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराग मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन्म व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा। रहाओ कोई होआ कर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, ओही संग समाई रहाओ, ओप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई, बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा ची

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जय देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुतेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे।

उड़ जायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो, देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया। अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो, चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो, मेरी मेरी करत सद ही विहावे। कोई ऐसे रे पेट है संत, मेरी लाह सगल चिंत, ठाकुर सो मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद नै चूके मन तेद, एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए, कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल आश्रम कीने मनुआ ने पति ने, विवेक हीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विधाता, पार ब्रह्म के रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेख। जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत, गुर प्रसाद को नेत्रों के खै। मन हट जो कमावे तिल ना लेख पावे, बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख है दाई, प्रभ की कथा सुनाई, तिस पेटे घट हुए हमारी। को प्रसन्न गोपाल राय, काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पेत्यो, निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जातरा।

तीरथ नाम जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रव करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा, दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुरु पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी तसंगम सत सते, आराद एकंकार साचा, नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हौ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मान्या मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन कोट न पगत पनारी, पर पुर रह आ सोई, नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया, फिर न सच्चे कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाए, सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा, नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म समाए, जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म न बूझे, हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबक सिंजापे, साचा सिरजनहारा, भगत सोहे दरबार सबद सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए, गुर कै शब्द विकाने, पारस पर से पारस होए, जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे, साचे के वापारी, भूख प्यासो आस क्यों दर जाए साजियो, सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो, सच नाम ते आए साच चवाई, गुरमुख साच पछाना, दीना नाथ दयाल निरंजन, अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई, आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, कृष्णा नाम निवारी, सनासी संत मैला पहला, तिर संग मूठड़िए खबर न पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख न मिटई पूर्व कमाया, क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती, हम गुण बै बैरोसी, तन जो बन आख की छाया, बिरद पए दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुन्या,
बूढ़ी कर का लियो गुर के पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख मेलो, हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, हम दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निज निज पगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यो प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो,

अवगुण यारी कंत विसारी छूटी विदन रहनी। गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए। तन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रलियाला जो बन बाला तिस रावे रंग राती। गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आईए जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाईए जियो। गुण गाए विगसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे सा पाईए। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आईए जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। अन दिन रह लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया। मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे। हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली वडिया।

पियो अमृत हर का नाम साध संग रावे जियो तब संग साधु इक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साथ सिखिया कट्टी जम की फासे तै परम नाथे छुटी गाठे जम पंथ मूल ना आविए दिनवंत नानक तार कृपा सदा हर गुण गाविए नितरिया पर एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख है स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माहे तराया पूर रया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख तय पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अतारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस्ते रह सगल तेरी सारिया आप करता आप पुगता आप सगल विचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोले जियो नित जपै तेरे दास पुरख अतोले जियो संत रसन बूठा आप टूठा हर रसे से मातिया गुर चरण लागे महा पागे सदा अंदिन जागया सद सदा सिमर तब स्वामी सास सास गुण बोले बिनवंत नानक।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुन जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना। कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही। पगलग राम रहे सर नाही।

तेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विध की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो। जो जल जल में पैस ना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का सी तजे कबीरा। रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई। क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर ऐबो। क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिदै बड़ियाई, अंत न काहू संग सहाई। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

बारे जो जन चक्र चले था देही गिरज न खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा से कर्त ठगौरी जादव एक

पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बक्कीनी, पंचों का मिटना वो, सत्तर दो परे अमृत सर, बिख को मार कडावो, पाछे बहुर नामन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लिपटाओ, माया नाम गर्भ जोन का, ते तज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन, तिन पौ सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाइए। मारवार जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा, नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कना, तर्क नचा

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रवि।

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सब्सी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पए है मन मुख ते मोह माया नित फाखा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था जैत सरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैत सरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जय श्री मैला चौथा
सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साद, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा, जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा। जैत करी महला चौथा, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किलविख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा, सत संगत साध पाई वड पागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंध पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा, हर के अर्थ खर्च नह साके, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी।

सतगुर प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझै, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हाहा करत बिहानी अवधें, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये। जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन शांत बुझियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो। जैसरी मैला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभ को नीरो, बेकुमार बेअंत बढ़ दाता, मने गहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आस्था मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहु चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से प्रम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे।

जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैतसरी मैला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो माया करा रहा ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैतसरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैतसरी महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैतसरी महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ ना

हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा, नेचल गोविंद काम। भगवंत भगत को पौ किछ नाही, आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करनी, सोई सोई बिनसत खाम। चरण कमल हृदय गो।

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ, समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास पयो उर अंतर शरण गही कृपा निज तेरी रहाओ महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया नाहन गुन नाहन कछ जप तप।

नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ जाको जोगी खोज तुहारे पायो ना इते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो।

सज्जन एक करों बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे।

जाए। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रिक जीवे संतिया, जन नानक गुरु पूरा।

आप गवाया। जय तन पाग मथाने बहा पकड़, ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

आई। माँ मंगल रहस थिया, फिर दयाल सद नव रंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी, त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत। ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गनो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिये, मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिये। लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया। सलोक निर्थ न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत। दूसर नाही ठाओ का पह जाइए, आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई। त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए, तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए। अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए, बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए। श्लोक रे मन पासो त्याइए, सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए, नानक निभे साथ संत। साथियरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए, थान थनंतर आप जल थल पूर सोए। जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी, गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी। पज शरण स्वामी सुखे गामी, तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख समाया संत। अब मन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले। हर नाम सिमरत मिटे किलबिख, बुझी तप्त अघान्या। गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या। ले अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले। बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले। जैतरी छंत मैला पंजवा, पाधानो संसार गार वे अट्या। करते पाप अनेक माया रंग रट्या, लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे। पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे। पुज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूते डिठिया। किर्त कर्म ना मिटे नानक, हर नाम तन नहीं खटिया। उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही, पर मैं जोन असंख मर जन्मे आवही। पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे, बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे। रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही। बिनवंत नानक परमे परमाए, खिन एक टिकन न पावही। जोगन गया बतीत जरमल बैठिया, कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया। नै नैन दीस है बिन भज ईस है, छोड़ माया चालिया। कया ना माने सिर खाक छाने, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया। चरण कमल शरणाए नानक आया, दुखर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे पजे श्री तर, कर अंग प्रभ जी तार।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

उर्दमुख कुचील बिकुल नरक घोर गुबार। हर सिमरते तू ना जले मन तन।

छोड़ी जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सो सोई है कर अनर्थ गर्भ।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

मन बिला स्वादं रसे कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तात्र में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विध

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल

गुरु नानक पत उधारणे भोजन भिखम असगाम गुरु बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरण।

ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभु आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहत ना ए मन लायो। विगस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बो पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो ने बूझियो अपनायो। पर उपकार ना कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग पर्यो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो

आया पयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथमूतावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा नानक बारक तुम मा

मांगो दान ठाकुर नाम और कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम तोड़ी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगारे।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण। करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता। नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

वड़े पाक गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके ग्रह में आया। टोडी महला पंजवा कर चौथा, दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद।

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहं रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनंत चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान रहाओ, खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभु मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ, दह दिस रव रया जस तुमरा। अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन, जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन।

दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पाग ही समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरडी ठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काट लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तक भी।

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई, सह नानक अब नाहि अनत गत, बिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो रहाओ। पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के पर हांडी अच्छे है, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी गो, बाणे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंह गो, देवल मदे लीग अच्छे, लीग सीग हिंग गो, तेली के कर तेल आ

माली के घर केल आछे केल बेल तेल गो। संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो। नाने मदे राम।

सुन मन अकत कथा हर नाम। रुद बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम। रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ 33 त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो। रहाओ किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया समते तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हों में रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत्व विस्तारा विचता तू पंचा।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साहु सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज कुलंग महला पहला कर पहला।

लीतड़ा लब रंगाए मेरा संत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए हो कुर्बाने जाओ मेरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ सुना कह लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला त्यागड़िए मानड़ा काय।

पाए अपने संत प्यारी सास सुहागन नानक सास बराई ऐसे रंग राती सहज की माती तैन सिपाही समान सुंदर साए सुरू

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तन साला है सच सब ऊपर हर तन जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन सेत सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ है तू होनहार अगम आगाद ऊंच अपार जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिन सहसो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया किसको बलिहार किसके संग तरह संसार करुणानंद प्रभु।

थापदा अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए जिन सुरैन जे तुद अरागे सो क्यों दोजिक जाए अजराइल या

वै गुण तामन तामन करे तो प्यारे तो पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही रे सोई, जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। ताप मिले कुन ताप को लिव लिव को तावे, गुर पर सादी जानिए तो अनपो पावे। पानावारी हुए कर खर सार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो

हरकिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया। आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाए।

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा के पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना, तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जगत छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

किया से आभार पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गल लाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तीजा मेर न आवई गुरसिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ हों गुरु वित्तों सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हों वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आसी है कहो कित विद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वरदाने हो सतगुरु को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहब हो तू है मेरा मीरा तुझ पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर इक रंग है आपे बहुरंगी।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माप पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय है सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाम हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

तेज कतेब इस तरह पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुखदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताए, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहा मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तेरा नाम खुंडकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। रहाओ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू बहन।

यार क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामने बरना, अशपति गजपति नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध परम पुन सुर समायण हो निराश जमावो। जपो साए को नामा अवर निराशन कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित अक्षर नामन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर न को।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा

जोग ना सुनसा जोग ना दंड जोग ना पसंद कराय जोग ना मुंडी मूल मुडाया जोग ना सुनी वाई है अंजन मह निरंजन रही है जोग जुगत तुर पाई है गली जोग ना होई एक दुष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ जोग ना बाहर मरी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देश दिशंकर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माई निरंजन रही है जोग जुगत के उपाय है सतगुरु पीते कांच ऐसा टूटे तावत वर्ज रहाई है निजर झरे सहज तुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन माई निरंजन रही है जोग जुगत के उपाय है नानक जीव किया मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सुजी वाजे तो निरपो पद पाई है अंजन माई निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला तेरा कौन शराब बुलावा कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा कह कह मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना तू जल थल मैया।

इन विद चित रहावा। आपे तंदा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जावे।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर दंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठ है हर रंग चालिया, फिर बौर न होवी पंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठ है हर उपदेशिया, हर के त्याराओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग। हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाखे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मंतन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे दया प्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरमत नगरी खोज हो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई, रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रव प्यारा टूट टुडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, गुरमस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक सुखा।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साद लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पग।

हर हर त्याय मन मेरे मन त्याय हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे किस हल्त पलत मोहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक के पवे चारा। जिस कार वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौपीढ़ी आग जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा जिते हर आराध्य तिथे हर मित सहाय। गुर कृपा ते हर मन वसे होरत विद लया ना जाय। हर तन संचिय पाई जे हल्त पलत हर होए सखाई रहाओ। सत्संगति संग हर तन खटी है होरत है होरत उपाय हर तन किते न पाई। हर रत्न का वापारिया हर रत्न तन व्याजे कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाय। हर तन रतन जरे हर मानक हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिव लाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही। हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। ए हर तन अग्नि तस्कर पानी है जमदूत है किसे का गवाया न जाई। हर तन को उचका नेड़ न आवई जम जा गाती दंड न लगाई। साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई। हलते विस्थाक दुहेले पै हथों छुड़ गया अग्गे पलत साकत हर दरगे टोई न पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो देख तो हर तन लग चलाई। इस हर तने का तोता कभी न आवई जन नानक को गुर सो जी पाई। सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो पगत सो परवान। किसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसया हर पुरुष भगवान। गोविंद गुण गाय जी।

ओ दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख तुझ ही पासे विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जब परम को दूर की जाए हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने आमान दिवाए जो धरती चरण तले के ऊपर आवे त्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने क्या तुझ पे आप सुनाई है बुरा पला तुझ सब किस सूझे जेहा को करे तेहा को पाई है मेरे साहेब तू अंतर की दिव जाने बुरा पला तुझ सब किस सूझे तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस भगत कराए इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख तंद पिटाए सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख देही तू नजर करे तेहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाए पाए कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग भय गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर

जिन शिष्य साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिकते गुरमुख ब्रह्म विचारो। सुई महला चौथा कीता करना सर्व रजाई चित की चै जे कर सकी है अपना कीता किसु न होवे ज्यो हर पावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साके ज्यो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जिहा तू पुर लिख पाया। पंच तत् कर

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजै अभिमाने। तैस्यो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आप प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल।

तुम क्यों हियो मिलन प्रवताई, खोज चरयो देखो प्रह जाई, सुन सदेशरो प्रह ग्रह सेज बिछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीरे निमानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो, रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती तिर सज्जा जनता, पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे

हुए कृपाल सब मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन ठहरा।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन तरसे चरनारे, पावो दान टीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को।

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदासे पुरुषवाई। रहाओ दूजा तुही महला पंजवा। बुरे काम को ऊट खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बूझे ना आना, माया मोह रंग लपटाना। रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा, सात जना का दर्श ना जीता। कभू ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना, हर जस सुनत आ

तो किस पाए जो हो ये रे ना जिसे बुझाए किस नाम लेना सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे गल में पान ले लटकावे परमे पूला साकत फिरता नीर बिरोले खप खप मरता।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम वलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा के दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जम दूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

आच्छा शावा पारी मरना जोदी से सो काले करना पूरे मोह लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निधान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तुही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूत तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण आधारे तुम ही पेक पेक मन विसारे रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे ओट नहीं अब साथ संगारे अगम अगोचर अलखा पारे नानक सिमरै दिन रह नारे सुही महला पंजवा कवन काज माया वड्याई जा को बिन सतबार न काई ए सुखना सोत नहीं जाने।

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पति पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मान अभिमानी स्वाद बाद ईर्ष मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कार जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किछ करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवां। गुर परमेश्वर करणे हार, सगल सिष्ट पौधे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए। रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए,

संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। सुही मैला पंजवा, दर्शन देख जीवा।

मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने।

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोक महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराय खुनामी कहाए, जो तिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी।

इस ऊंट की ओर सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाओ प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

साध गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद दे पाज दिन

परण पोखण संग औद्विहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साध संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रत्नागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे। गुर पूरे मिल पाप सजायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार गम त्याये। पूरब लिप्त हुए ता पाइये, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संतर वाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंगिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिसकी गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। कर पूजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संतर वाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा अवर न कोई, आपे थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। सुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग परा।

अनित दया न पाई, अनित जन्म बीतियन परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी जाए किर्त पवाई, सुन साजन सा

आमना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना किते कार जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर विद्या जे रच लो भाए सब किस तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए सुही मैला पंजवा हर का संत प्राण।

न्याई पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुने पुने करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

गुरिया मोहन लाल ना, जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अन कोठरिया तिन तिन तिन तिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविद क्रिया, पर को हिरिया दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया। सुही महला पंजवा, रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविद रूप रंग अपारा, एक है खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौं कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपार।

साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद पावै तो परवान मन तन तू है आधारी राव तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रैन सात सात गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा तू ही मैला पंजवा विसरे नाही जित तू कभू सो थान तेरा केहा आठ पैर जित तुद पिराई निर्मल होवे देहा मेरे राम हम तो थान पालन आया खोजत खोजत पया सात संग तिन शरणाई पाया रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे दिल लाते ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता तिन भी अंक न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन केट्यो।

निमुख सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल पर ही जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौ वर्णा को सांझा। गुरुमुख नाम जपे उदरे सो कल में, कट कट नानक माजा। सोई महला पंजवा, जो कुछ करे सोई प्रभ माने। ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई। जिन प्रभ के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई। भगता बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल में यल सोई। रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यों आन मिलावे। माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे। जे हा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे। जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने। कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने। सुही महला पंजवा, माँ अगंते तुद हाथ दे राखे, पे तेरी शरणाई। तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा।

प्रभ आप कराए आपे सेवा लाए। परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता, कवन कर्म करे आया।

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह ध्यानी कृपा करो कब करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुखला।

कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

ते संग पाए अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड अवर न कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए दो कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठे पावा सास सास नानक आरा दे आठ पहर गुणगा।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या यो मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते, सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदिया महला पहला कर कहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंस मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना फुल टंग ना मीठे बैना। रहा सह सिदार कामन कर आवे, पां सुहागन जा कंते भावे। ना किस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत ना ही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रते रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे सो चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पावा तन ना है जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदत आए ना पाहे जियो। गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित

से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी दुख जियो। बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो।

खास रले मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो, नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो, किंचो तान विगुची है बुरा पला दोए नाल जियो, बिन शब्द पैर रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

आपे रहा समाए सो विस्माद खाया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरुमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वे ता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, विखटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, हों में विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए त सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अक्सवालियो तिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का सबद समाले हर की भगत सदा रंग।

काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, इह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाईए, मोल कित ही नाम पाईए, नाही नाम पाईए गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम भुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सत नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाहो रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। मां पुरखा का बोलना होवै किते परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है, ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवट पागी जे

मन मुख मन ना पिजई आत्मैले चित कठोर सपै दूध पियाए अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सू लिव लाए हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर सब स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो संभाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमति सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन, अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटई। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिनके बलिहारण, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, पुर पूर्व होवे लिखिया गुर पाना मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंगा किसनो आखी है शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आखदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सोही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताए कृपा करें ता सतगुण मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे से आई, जे कुख देहे ता इत ही राजा दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सोखाई। नानक गरीब कह पया द्वार है हर मेल लहो वड्याई, अखी ताड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई।

बह जाए। जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए। जो धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई।

जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वरसे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सोही महला चौथा, अष्टपदियां।

आपत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याज कै वस्तर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कछु सियानत उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह नेकन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रब एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कबू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित्र।

नाम से आवे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया दरगै पैदा जाय जियो। एथे सुख मुख उजला इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया सर्व जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम धन माल जियो। मन से कबो न विसर जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ताका अंत न पाये ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमे लखवार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है बिन से सगल संताप जियो।

नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सुई महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां, काफी

दिया। जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरो से वाडिया। हो ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिर महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया। जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया। जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाव जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरिय किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण, पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाए मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम दे हो, गुण गा दिन रात नानक चाओ ए हो। राग सुही महला पहला कुछ जी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मंज कुचजी अमावन दोसड़े, हों क्यों सो रावण जाओ जियो। एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सकी सोहरावया से अंबी छावड़ी है जियो। से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो। इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो। से वस्तु सहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो। हों इनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो। तै सहनालो मुतियस दुखा कु तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा इक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सावास जियो। पाने तख्त वडाइया पाने पीप उदास जियो।

पाने फल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो। पाने पवजल लंगी है पाने मंज परियास जियो। पाने सो सोह रंगला सिफ्त रता गुणतास जियो। पाने सोह पिहावला हों आमन जान मोई आस जियो। तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह कह पई आस जियो। क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया सत नानक की अरदास जियो। सुही मैला पंजवा गुणवंती जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बताए जियो।

दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो गुरु

ज्ञान है। सच संतोष सदा सच पल्ले, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए, गुरमत पंथ समाए। राग सुही महला पहला, संत कर दूजा।

मिलाए, हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। स्थाई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया, अंजन मेल कया मन मानिया कर्म अंदर सोहाए, पंच शरत अंधद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य सब सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मंथन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना, आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए, काल विकाल कहे देवाने मन राखिया गुरु ठाए। नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए।

आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख कही ने केवल जन्म मरण दुखना सा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुबाई। नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

गुरु प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया विया हो हुआ सोग सेती पंच शब्दी आया जिनकिया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सू से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वे वासला कड़वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मल्लिए जिथे जाए गई।

आखणता को जाइए जे फूलड़ा होए। जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले। सुने देखे बाद कहे है दान मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नाम।

सोई गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई। सुख सहज आवे सास पावे सास की मत क्यों टले। स्नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचल्यो क्यों चले। परपंच मोह विकार साके कूर कपट न दोई। मेरा मन राचा गुण रवे मन पावे सोई। साहिब सो साला ही है जिन कारण किया। मैं लागी मन मैं ले किने अमृत पिया। मत अमृत पिया ए मन दिया गुर के मोल कराया। आप नड़ा प्रभ सहज पिछाता जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया। साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता। प्रीतम स्यों मन मान्या हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया। पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारया। हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई। आवन जाना नाची है साची मत होई। अंजन कैसा अंजी है जैसा फिर पावे। समझे सूझे जाने।

कौन अफेवे। तंत मंत्र पखंड न जाना राम हृदय मन मानिया। अंजन नाम तिसे ते सूजे गुरु सबदी सच जानिया। साजन होन आपने क्यों पार कर जाही। साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करे रलिया करम करम सबाया। अठहठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया। साजन राग रंगी लड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने। आप उसे मत होछिए क्यों राह पिछाने। क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली। विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूढ़ो तंदली। दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे। कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा तों करे सत शब्द पतीना। सब दे पति जय अंक पी जय।

सोई ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न फुले जय जयकार करे तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलहारी गुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुन।

पावगा। अंदरों दुर्मत तूजी खोई सोजन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अंगन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। जय जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राख है। जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे। हों मैं सबद जलाया राम, हों मैं सबद जलाया। मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करें दिन राती। गुरमुख आप वखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल। नाम सच्चा मन भाया, नानक भगत सोए दर साचे। जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात पत है। भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे। जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने। पै भगत मीठी लागी, हम जिन भगत करे दिन राती। कर ही मैं बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल। हर जियो वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कह दर साचे। अम दिन नाम समा

मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज भी गोई विन गुर तत न जानिया भगत भी होना सब जग परमिया अंत गया पछताणिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वड्याई दूजे पाए पत खोई भगता के कर साचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना पे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे नाम निधान सच पाया सदा फुट कदे नाम फुटे हर दिया सह सुहाया हर जन ऊंचे सभी ऊंचे गुर के सबद सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोगा पाया सुही महला तीजा सबद सच्चे सच सोहेला जिथे सच्चे का होई विचारो राम हो मैं सब किलव काटे साथ रखिया उधारे राम सत रखिया उधारे दुत्तर तारे फिर पाव जल करन न होई सच्चा सतगुर सच्ची बाणी जिन सच बिठा लिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सतगुर साच बुझाया तत राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए प्रगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए हम दिन सच आयन नानक सच नाम जिन हृदय वस्या ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे चित का सोहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वर्ते सचो बोले जो सच करे सो होई जय देखा ते सच पसरिया और न दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावे मर जन में दूजा होई नानक सब कुछ आपे करता आप करावे सोई।

ही सच्चा सुख सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

इंद्र नाम संभाले। गुरु सब दे राता सहजे माता नाम मन वसाए, नानक तिन करे सद ही सोहिला जे सतगुरु सेख समाए। बिन सतगुरु जग परम पुलाया हर का महल न पाया राम, गुरुमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया जहाँ हर मन पाया, सदा गावे रंग राते हर के पगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते। साची पगत करें दर जापे कर दर सच्चा सोई, नाम सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी सब दे ही सुख होई। सुही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम, सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुभाए, सापन कंठ प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सबसी दारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आप

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वडपागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको, एको राम पतारो राम, गुर सेवन सत गुरदाता, हर हर नाम समाया राम, हर तूर देवो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदी न जाई। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर सीजनी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुंगाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वडपागी पाया हर कथिये अकथ कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिया मस्तक पाग जियो।

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभु आया अंदिन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभु।

जा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहै विलाए, वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अंजन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए, मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिंठी पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

खास शब्द विलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा।

जाए। हों पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए, गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया वडपागी, सच नाम लिवलावे मत प्रगास पई मन मानिया, राम नाम वडिआई नानक प्रभ पाया, शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हों मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुणता से, तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब आसे, वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा, कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हों तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा, वड पागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दहज से चल चल परमिया, मन मुख परम कुलाया, नित आशा मन चितवे मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक।

मेरे हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारया, मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारया, वड पागी प्रभ आई मिल जन नानक खिन खिन वारया। सूही छंत महला चौथा, मारे हसवे जन हो मैं बिखिया, जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया, दे कंचन वे बनिया इन हो मैं मार विगुतिया, मोह माया वे सब काल खा इन मन मुख मूड सजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हो मैं छुटिया, वस आण हो वे जन इस मन को मन बासे, ज्यो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया, नित आसा आस करें दिया, गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया, जन नानक प्रभ देहो मती छड़ आसा नित सुख सौंदिया, सा सन आसा चित करे राम राजिया, हर प्रभ सेजड़ी है आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया, कर कृपा लिहो मिलाई, मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया, हर सरदा सेज बिछाई, जन नानक हर प्रभ पानिया, राम राजिया मिलिया सह सुभाई, इकत सेजे हर प्रभु राम राजिया, गुरु दसे हर मेले, मैं मन तन प्रेम बैरा।

अड मह नाम लो गोविंद नाम मजीठा थी रहे लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोह मगन थी रहा झूठ संग लपटाना नानक दीन शरण कृपा निध राख लाज भगवाना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना सुन बावरे जो आया तिस जाना नेचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई है पागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै पूरा मानो सुन बावरे हब वैसी गर्भ

ते पाई साचे सृजनहारा जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दस पेटिया गुरपुरा नान सद बलिहारी समलिया सच स्थान मान महत सच पाया।

लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस्य उपजय मन का।

चढ़ दाना कर मेरा मत साई कृपा की जैसा मत दी जय हाथ पैर तुत्याई गर्भ ना की जय रेण हो भी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अट गहर गंभीरा तुम फिर हम दोरिया राम तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमिष प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे।

तू पर्वत मेरा ओला राम। हों बल बल जाई लख लख लख दरिया, जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे विकारे, ठाकुर सो मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा। साजन पोख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता ताई सुत बंदक, जी प्राण मन पाणा राम।

जियो पिंड सब किसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो कब मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याण सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सर कुर्बाना ऐसा गुरु वड़कागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी सकल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन्ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया है मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम से आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए सोही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जन पंख सा दे दुख न व्यापे कोई जल कल नहीं अल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाठे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा की जय नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहस्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे चरण चले प्रभु मार्ग राम हर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे परम पारम गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अचल नीव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा बजे नितवाजे पार ब्रह्म मन उठा राम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पैच उठा राम अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी
जस सुन सुन मंगन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। कर मैं नवनिद परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फल्या सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खल्या। गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बनपाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया गुरु चरण लागे सदा जागे मन रजिया वादाया। करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्प कल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया। सुही मैला पंजवा पै सागरो पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम। बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम। गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना जो किछ करे सोई फल मानो तामन सह समान। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कब होना जाय। सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने। अनग दिनोद कहे नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप न रह प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम। सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम। करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगाते गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी सब सवारे सदगुर पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई।
ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पर कंजन अनहद वाजे सुनिए राम। अनहद तुमकारे पत विचारे संत गोष्ठ नित होवे। हर नाम आराधे मेल सब काटे किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बोल न पाई जोनी है। नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साधे छुनी है। सूही महला पंजवा संता के कारज आख खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया।

आप खर्चक दिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाए अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ ना थे दुख न निर्णय आया शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूछ सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य इतन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी जिन उद्यम किया काल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अखर तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती ममता ने अमृत पी जय बिनवंत नानक इच्छ पुनी पेख दर्शन जी जय राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवर अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कह

परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोकानाल।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती के तेरा सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सत्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में तूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीर सचड़ाओ उल्टी सकत सिवै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्द सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाए नी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सहरे बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पाप विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाय को आई है मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना।

सुहा वेश छड़ तू तातिर लगी प्यार, सुहे वेश तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार। सतगुर मिले सुहा वेश दया हो मैं विचो मार, मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सुहा परहरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता। सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता। जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंका नाल महेलिया सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया, नावे जेवड होर दात नाही किस रूप न ना रिखिया। नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया।

जाओ। रात कारण तन संची है, पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए। महला दूजा, बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा, मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले, तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी, करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक महला दूजा, जिना पाओ तिन नाहे पाओ, मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया। महला दूजा, तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारिया लग पे गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया को बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो तरे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे मैं ना तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिंगार सेजै कंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो।

नानक एहो पन जाल जिन जलिया नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निवंदे ताल महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो पुरख सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे सन चोर एक पौलथी नात्या देखा चढ़िए सहोर बहर धोती तू मुड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दै जिस ए मन पाऊदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दो जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जा रे खुले हट को आवा पार जो पहुंचे सो चलन हार परम दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालिया सुपेदा सेवन देव बग्गा पतै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन हों में विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संकापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर खापे सब जग खेल रचायन।

हर हर नाम सलाइए सच पार कमावे, दूजी कहर लगिया फिर जोनी पावे, नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर के सब सलाइए हर नाम सुनावे, सतगुर सेवा सफल है सेवे फल पावे। श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई

महला दूजा जा सुख पासर आवे हो दुख भी संभाले हो नानक सियाणी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की कबीर के इक ओंकार सतगुरु प्रसाद अवसर आए कहां तुम कीना राम को नाम ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके कुतंग जीवाया मरती बार इकसर दुख पाया कंठ गहन तब करण पुकारा कह कबीर आगे ते ना समारा सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या कर सी पियो रैन गई मत दिन भी जाए पर गए बग बैठे आए रहा काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाथ दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तिसे सरे हो जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन ताले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस मुसलतावे रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बहुबिष्टाला ले ही बेहतर कर एक पुरुष समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाम विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने
तन मन दे ना अंतर राखे, अगरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दोए पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है।

तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरा नो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यह तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

जो किछ होआ सब किछ तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चकराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अपथ ना जाए।

रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी,

तैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग अधेयो रहाओ। माया मोह तरक तीनार, ऊंदी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चामन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना होए, एक एक को ना ही तो कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मंगते मारिया, थाक रहे मन खाते तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम कुले गौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली, सास दिरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हो मैं मेठ चले गुर शब्द समाए। मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों, जित हूं खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आख बखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे, परम कुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे। जिसनो नगर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माए निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल्य क्यों तोले आ जाए, दूजा हो तो सो जी पाए, किससे दूजा ना ही कोए, किस दी कीमत की क्यों होए। गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवटी लाए, आपके परखे आप चलाए, आपके तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपके लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए, अंदिन लागे सहित्याना। रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना।
कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा, इक ना कर मैं देवल आई इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा फाट बनाया पूरे वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड्याई मत तो करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चहु जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना, जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपको अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुवाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान मेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हों में माया शब्द जलाई दर्शा तै गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे न जम पेख है कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान सब ही लागा सहत्यान हम जिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जह देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द तक मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना ज्यों नटुआ संत बजाए।

हम पापी राज पटना हर दासन दास दास हम करियो जन मानक दास दसन्ना बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगध अज्ञान मति शरणागत पुरुष अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो ने फल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख सम्मा कोय फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा। बिलावल मैला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रब हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मति जस करा तुमरे संग लगे से उदरे जो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मद्दम जिन हर हर सेव न करा ते नर पाघीन दोचारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहे थे कल युग खेवट गुर शब्द करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाये उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब दिख रसो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार गम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे सा हो वै जे बात हो वै नहीं अपना पला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी हम दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी हम जंत तू पुरख जंत रहनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल मेला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अन दिन अनद आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे कृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो तेली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे। ओंकार सतगुरु प्रसाद।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नाम के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर के भगत सदा फिर से, हर शोक से रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्प पुयंगा, हौ में पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ होए कृपाल संग गुरु मिलावे। हौ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर किसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया किस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनग रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आज समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगाव जाका वड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुर टूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रपाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोय अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोय निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहाओ प्रभ चित आवे था कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ दसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा या नड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, रासन को तुम एक। रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुर देव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मा

पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नाम के जो प्रभ अपने पाने। पूछ अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पारू पारे, नाम सुबास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहार है। बिलावल मेला पन्नवा दिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती काई सादा दासी थियो। नाम से दशोभा बनते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सकिए मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सकिए अंत तज जावत माया। रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साध जन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वड पागनी सकिए संता संग समाये, कह दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाये। कह जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाये, प्रेम बिचो न मोह व्यापे नानक हर एक ते आये। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए। सती सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा को उतार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो का पारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला तन्वा आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहा आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल न जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप अलिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा तूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

हाँ, बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रब मांगन, तुम पे खत्सोगा मेरे आंगन, रहाओ, अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रब दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तत्व व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता न हर गुण गाया, देहो परत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम त्याई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ, अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए, बिलावल महला पंजवा।

रहाओ। ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना साहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय से आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अतक कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ पाप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत तिल विक्षवना से। अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिद समारया। साथ जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वंश ऋण त्रिभुवन हरया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का पैसो काल। रहाओ साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रतपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी सांका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज पर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई। नानक गुर पूरे शरणाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार, रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवसर जोग। आए बसो कर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल। रहाओ अहं बुद्ध को बिन सना, ए पुर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज आनंद सुख, पूरे गुरु दीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत में, लोचे सब जिया। सो पर सन पे सतगुरु प्रभु, कस बिघन न थिया। जा का अंग दयाल प्रभु, ताके सब दास। सदा सदा वडियाया, नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू कर बार। बिन सत बार ना ला गई, ज्यो कागज बूंदार।
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार रहाओ जैसा सुखना रहन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मत तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा मेला कदे न हो वही नहला गे दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहा जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्द तेरा पार जम गुण नित तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी बिलावल महला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूल थे तुम बक्षण हारे रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाय कही है काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमारा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे बिलावल महला पंजवा निरप हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाई जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा बिलावल में।

जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो त्रिण मेर दिखीता, श्रम करते दम आज को ते गणित नीता। कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा। अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साद, लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद। ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद, राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ। रूप तूप सोगंधता का पर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर दसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत। नेचल आसन मिटी चिंत माही डोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साथ संग हर हर अमृत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब काम मिटे गत कई हमारी। जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी। रहाओ एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अपदारी। निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी। तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उपत स्यान कछ नहीं ना ही कछ काल,

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुम्हारी कृपा से छूटी है बिनस अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपुर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसापुर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना।

राज मिलख सुतवारिया अग्नि में जाल, संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान, भगत जना का लूगरा ओड नगर ना होई, साकत शिल्पा रेशमी तहड़ते पट खोई, साकत से मुख जोरे है अदवी चो टूट है, हर जन की सेवा जो करे इत ऊतें छूट है। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेट साधका नानक गुण गाय। बिलावल महला पंजवा, श्रवनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर, हर नाम से आव कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेणका ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसरे अनपते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो, सत संतोष दया तरम शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगताया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे कह हर राया, ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानुष जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ तहराया। बिलावल मेला पंजवा। माती ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते।

मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभसो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी ए हे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करण हार जो कर रहा साई वडियाई, गुर पूरे उपदेशिया सुख खसम रजाई। चिंत अंदेशा गलत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सैने छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा कपत ते पई शांत पर सत पाप।

जिन प्यो तक होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस संग हर साध कै पूरन आशा।

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध के बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करें संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर लिव लाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

अपार मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ से निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा सित पाई अनद भया।

कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पहु नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूती है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

तुम्हें मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैथर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस्तीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभु जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहा। जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीव किया अथवा मोया किस काम न आवे, जिन इहो रचन रचाया को तिस्यो रंग लावे रहाओ। रे प्राणी उसन शीत करता करे काम के काडे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे। अंडज जेरज सेतज कुछ पुजा प्रभ की एह किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंधते नानक गुरकाद। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहर।

परज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निभत रहै गुर शब्द अखूट पूरन पई समग्री कभू नहीं टूट रहाओ साध संग आराधना हर निद अपार कर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करकार पुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लाजता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी, किछ ऊन न दिसे संत प्रसाद के।

सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद्र की लस्तुता जिन मारिया।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हार राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया की ना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया नाम दी।

जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय, किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है, मिल साथ समाज है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है। राम नाम जो जम जपे हम दिन सब जागे, पंथ मंत्र नह जोई सिर चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग, आनंद मगन

जम कंकर नेड़ ना आवई गुरसिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग ताते बहुत ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुन गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भय बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभु प्रगुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लखट सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब

में जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद में देख प्रभ की तीर बिलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जाती सेव पूछ अपार अजनक हर सब जीव सहाथ नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा राध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया।

आप जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाओ प्रगट भय संसार।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकि भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत मनाई, राम नाम और सब दिया एक।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेक नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

नानक की बेनंती प्रत है सात संग रंग तार बिलावल महला पंजवा। संतन के सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिन अर रात रहा कर कृपा अपने प्रभ की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तंभ से जात। त्रिपत अघाय तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ। गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिनसे कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सदगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो। कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महा

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरन एक संपूरन, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर कामना आवत है, जासु राच माच कुम लागे।

उर्ज्रहो इंद्री रस्त्रेरो विकैठ गौरी खावत है। त्रिनको मंदर साज सवारयो पावक तने जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे केस गहे फिर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जो पहावत है। कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। त्रै मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा पोत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंद मई। जब ते पेटु साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई। काम करो तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तुहे सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक पेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो। अवकाश ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल करी, पूरन पूर रहो कृपा निध। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभु ने।

ज्यों कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परिय आठ पैर चितव नहीं पहुँचे, बुरा चितव चितवित मरिय। निंदक प्रभु तुलाया काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरिय। नानकारा था आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करिय। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे करे करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काटे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ, त्यानप ते सब पै स्यानप। प्रभ मेरा दाना बीना, हाप दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख।

मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहाओ, कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही, संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही, बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कैसंगा रहाओ, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते तहरा जंगा, कभू न बिसरे हिए मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा, बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आगे, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताची बाल, दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिलेरवाल, बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ, जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ काज लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे, बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहाओ, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में हो गया है खाक, मंदा चितवत पचया, जिन रचया तिन दीना साक, पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक किस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूरन वाक।